0: निर्माण नेपाली पेन्ट्स कम्पनी चटनी पेन्ट तीन दशक देखि नेपाली मन को रंग
1: रेड बुल बबाल एनर्जी।